और दूसरा एतबार, अभी कुरान बाकी है, अभी कुरान को सही समझना बाकी है। एक तो समझना है और फिर सही समझना है, क्योंकि हर समझने वाला सही नहीं समझ रहा। सही समझने का मेयार क्या है? पूरी उम्मत कुरान मजीद पढ़ती है, जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या पूरी उम्मत कुरान मजीद को समझने वाली है, सही समझने वाली है? कुरान मजीद को पढ़ना है और इस अजीम महीने में जो महरूम है कुरान मजीद की तिलावत से, तो वो भी हर खैर से महरूम है। सलफ सालिहीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन का हाल कुछ ऐसा था, जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो उनकी आंखें तर हो जाती, क्योंकि वो कुरान मजीद को समझने वाले थे, सही समझने वाले थे। और रमजान उल मुबारक महीने में कुरान मजीद की तिलावत का खास एहतमाम करते थे। बाद सलफ से साबित है कि 3 दिन में ख़त्म करते थे, और बाद 7 दिन में, बाद 10 दिन में, यानी 1 महीने में 1 से ज्यादा ख़त्म करते थे। वो 3 दिनों में इसलिए ख़त्म करते थे क्योंकि वो समझने वाले थे। जब पढ़ते थे तो समझ भी लेते थे। हमने दुगनी मेहनत करनी है, हमने पढ़ना भी है और सही समझना भी है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी प्यारी बेटी सैयद फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बेटी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमजान में 1 मर्तबा आते थे, युदारिसहुल कुरान, कुरान मजीद का मुदारसा करते हैं, पढ़ते हैं। और इस साल में 2 मर्तबा आए हैं। मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है। रो पड़ती है, फिर कुछ और उनके कान में सरगोशी से कुछ फरमाते हैं, फिर मुस्कुराती और हंसती हैं। सैयद आयशा रज़ी अन्हा पूछती हैं, पहले आप रोई हैं, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है, फिर आप हंसी हैं? तो नहीं फरमाया, कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने ये बताया कि मैं रोई इसलिए थी पहले कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उनका वक्त करीब आ चुका है। वो निशानी क्या थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस रमज़ान में 2 मर्तबा आए हैं। और फिर जब 2 मर्तबा अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बात की तो यह फरमाया कि मेरे घर वालों से सबसे पहले

समझ के साथ। तो जो कुछ हम पहले करते आए हैं उनमें मजीद मजबूती और चुस्ती की जरूरत है, तेजी की जरूरत है। सबसे पहले यह करना है, मुश्किल है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर दो, इसी हदीस में सही बुखारी मुत्तफ़क अलैह हदीस है, वह अहया लैलहु, अपने रात को जिंदा करते थे। रात को जिंदा किया जाता है, क्या मतलब है इसका? यानी रात को अल्लाह ताला की, रात को अल्लाह ताला के इबादत से जिंदा किया करते थे। आप ये जानते हैं कि जिंदा और मुर्दा सिर्फ इंसान या जानवर नहीं होते। हाँ ठीक है, जो सांस, जो चीज सांस लेती है, हरकत करती है, जो भी जिंदगी के अलामात है जो हम साइंस में पढ़ते हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन शरअन इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिंदा है और जो मुर्दा भी होती है। बाज इंसान, चलते फिरते इंसान मुर्दा है, बाज घराने, बसे हुए घराने भी मुर्दा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिंदा और मुर्दे की मिसाल ऐसी है जैसे कि अल्लाह का जिक्र करने वाला और अल्लाह ताला का जिक्र ना करने वाला है। जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो जिंदा इंसान है, और जो अल्लाह ताला के जिक्र से महरूम है वो जिंदगी से महरूम है। इसी तरीके से कई ऐसे घराने हैं, उसमें इन घरानों में हरकत भी है लेकिन बरकत नहीं है, क्योंकि जिंदगी नहीं है, जिंदा लोग नहीं है, मुर्दा लोग रहते हैं, उजड़े हुए घर हैं, खंडर हैं। अगरचे देखने वाले के लिए कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वजह क्या है? अल्लाह का जिक्र नहीं होता। क्या होता है? शयातीन, दुनिया जाके सारे शयातीन जमा किए अपने घर में, गाने बजाने हैं, तस्वीरें हैं, कुत्ता घर में है, सब कुछ है, दुनिया जहां के हर गंदगी घर में मौजूद है। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है, ना नमाज का कोई पता है, घर में कोई नमाज ही नहीं पढ़ता। जिस घर में नमाज न हो कभी जिंदा घर हो सकता है? मुर्दा घर आना है। जिस घर में तिलावत का कुरान ना हो, जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र ना हो, क्या ये जिंदा घर आना है? नहीं वल्लाह। अपने दिल को जिंदा करें तौहीद से, अपने अमल को जिंदा करें सुन्नत से, अपने घर को जिंदा करें ईमान से, तिलावत कुरान से, अल्लाह ताला के जिक्र से। वो अहया लैलहु, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात को जिंदा क्या करते, अपनी रातों को जिंदा क्या करते थे? आखिरी दस अशरे में सलातुल लैल कभी छोड़ी नहीं अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उन पर फर्ज थी, कभी नहीं छोड़ी। रात को वैसे जिंदा क्या करते थे, लेकिन रमजान में खसूसी तौर पर, क्योंकि रातों की खसूसियत है, ये खास रातें हैं, ये अल्लाह ताला का, वल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम और एहसान है ये दस रातें जो है। तीसरा काम जो हमने करना, क्या ये दूसरा मुश्किल है? जागते तो हम हैं, हमारी रातों जिंदा तो है, हम जानते हैं, लेकिन कहां पर जिंदा है? हकीकत वल्लाह मुर्दा है। बाजारों में रातों को जागना और सारा वक्त जाया कर देना, या ट्रैफिक में फंस के वक्त जाया करना, कहां जा रहे जो बाजार जाए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, 20 दिन कम थे, उससे पहले भी पूरे साल में शॉपिंग कम थी, आखिरी 3 या 4 या 5 या 10 रातों में शॉपिंग याद आ जाती है। अच्छा शॉपिंग कर ली एक दफा, नहीं एक दफा नहीं, शैतान सवाल ही पैदा होता कि इन 10 रातों में आपको सुकून से घर में बैठने दें या अल्लाह ताला के जिक्र के लिए वक्त निकालने दें, बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हाँ, ख्वाहिश नफ्स, बुरी ख्वाहिशात। असल ताकतवर वो इंसान है जो अपने ख्वाहिशात को दबा के रखता है अल्लाह ताला के लिए,
ناجائز خواہش.